0: नेपाली पेन्ट कम्पनी जस्मिन पेन्ट तीन दशक देखि नेपाली मन को रंग
1: रंगीन जस्ता पाता गुलास जुरा कलर और तीन गुणा बेसी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक आप टिकाऊ है तीन गुणा बेसी टिके
2: हुलास छे त और कथिले खोज्दै
3: वाटर ले बुझ्छ।

शर को है राई छाती भी भर झुक झुक झुक झुक पहाड़ चढ़ता ले लच्छा चढ़ाई गर्मी झेलाई पहाड़ चढ़ता ले लच्छा चढ़ाई गर्मी

पानी झे चंदन मटी निहराओ तू गो झे धरती मटी मिसमाओ पानी झे चंदन मटी निहराओ।